ए मांगे अलेवल कर बुखाले वैरदी कला मांगे अविश्वास कला या दिन निकट आदरे कला इट पस्से आइंगो ना मामा गया